0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranist shuida. Katasu

0: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलवर स्वाबी।
1: आप सुन रहे हैं दिलवर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
1: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
3: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
1: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग
1: चैनल रेडियो दिल पर रेडियो दिल पर रेडियो
2: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी From 5 a.m. to 1 a.m.
3: This radio station plays only music. Today's best music.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swarm 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुझे रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे बात दुआ शामिल हो, वही यकीन ही उम्मीद आपके अपने बाबी में। जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को एक इंसान समझा जाता है। सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, अरी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं

0: से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
1: मावेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर शमा।
1: ओहो, पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा।
2: नुद्दा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स। फोन 09382732658।

एंड अच्छा भाई, अगर इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी आप बता दें तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस. एमान नूर फ्रॉम हरिपुर. एमान, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, आपने उस नंबर पर कॉल करनी है और उस नंबर पर कॉल करके

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी
1: बेहतरीन मेडिसन तैयार सुविधे उल्टी कवल खराबी दिल गुर्दो बाने दर्द नाटल गुर्दो की बार बार काण की दिल गुर्दो की बार बार शुगर की दिल खूब नवरतल या खूब बेनतहा डेर ज्यादा वरतल खुलेला त्रवी त्रवी और खास खा उबरातल बार बार

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक.
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तिंगल आर शमा.
2: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स.